0: मैं कुछ भी कर लूं,
1: तुम कभी मुझसे मोहब्बत नहीं करना चाहती,
0: और तुम
1: कुछ भी कर लो
0: मैं कभी तुमसे नफरत नहीं कर सकता।

खबर आई, युद्ध जारी है, काफी कठिन परिस्थिति है। आपका प्रेम और आपकी तपस्या शायद उन्हें जल्दी वापस ले।

लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज योर कैप्टन स्पीकिंग। आज की फ्लाइट में आप सबका स्वागत है। हमारा क्रू आपका बहुत ख्याल रखेगा, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि अपनी चोली टाइटली बांध लें ताकि दिल बाहर ना गिर जाए।